0: जो खेलेगा वो खेलेगा. ऑलवेज चीयर फॉर भारत. भारत माता की
1: जय.
0: भारत माता की
1: जय.
0: भारत माता की
1: जय.
2: अवसरेस्मिन् युवकार्याणां क्रीडामन्त्री मनसुख माण्डविया तथा युवकार्य खेल राज्यमन्त्री रक्षा निखिल खड़से च उपस्थिते आस्ताम्. देशस्य सर्वेषु भागेषु हर घर तिरंगा इति अभियानं देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाः भारतस्य च समृद्ध सांस्कृतिक परम्परायाः प्रोत्साहनाय आयोज्यते.